0: ಸೈನ್ಸ್. ಖಂಡುಗೆ ತೊಬಿ ಹಾದಿಸಾತಕ ಬೆಹಿ ದಿರಾಸಾಯಿಕ ಭಯಾಂಕುಫಾವಾ ಗುತುಗ ಖಂಡುಗೆ ಲೋಣುಗಂಡಕಿ ಬೇರು ಫುಶುಂ ಬಲಾರು ಎಗ್ಗೊಂಗ್ ಎಚ್ಚಗೆ ಗುತುಗ ಫೆನುನು ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ದುನಿಯಾಗೆ ಎಸ್ಕಿ ಸರಹತ್ತೌಗೆ ಖಂಡುತೌಗೆ ಲೋಣುಗಂಡುಗೆ ಬರದಣ ಸಿಫತೌಗ ಬೊಡೆತಿ ತಫಾತುತಕೆಂ ಹುರೆ ಮಿ ಲೋಣುಗಂಡುತ ದತಿರು ಕುರಣಿ ವಕಿ ವಕಿ ಯುನಿಟ್ ತಕೆಗೆ ಗುತುಗ ಏಯಿ ಸಾಫು ಬೋರ್ಡರ್ ತಹಕುಂ ವಕಿ ಕುರೆ ಫಾವಾ ಅದಿ ದುರು ರಾಸ್ತಾಯಕ ದತಿರು ಕುರಾರ್ವಿಸ್ ಎಕಿ ಲೋಣುಗಂಡುತಂ ಎಕುನುವೆ ಏಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಸಿಫತ ಹಿಫಾಟಾಗುತ್ತಿಗ ಜಮಾನಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ದಿರಾಸಾದ ಕುಮ್ಮಿ ದೆನ್ನೆವಿ ಹುರಸ್ತವುಗೆ ಪಾವೈತವುಗೆ ಮೆದುಗಾ ಹುಣ್ಣ ಫುನ್ ತಫಾತುತ ವರ ತಫ್ಸೀಲ್ಕೊ ಭಯಂಕುತ್ತೀಫಾವೆ ಖಂಡುಗೆ ಫೆಂಗಂಡುತವುಗೆ ಮೆದುಗಾ ಕೋರುತ ಖಂಡ ಬೇರುವ ಸರಹದ್ದವುಗಾ ಹುಣ್ಣ ಪದ ವಕಿ ಹಣಿ ಸರಹದ್ದೆ ನುವತ ಬೋರ್ಡರೆ ನೋವೆ ಖಂಡುಗೆ ಮಿಫದ ಸರಹದ್ದಕ ಗುಳುವ್ಯಾಗೆ ಮುತಿಯಾ ಮುರಕಾಗೆ ವಾಹಕ ಜಿಕುರು ಕುರೇಫಾವುತುಮಕಿ ನುಹಣು ಮುಹಿಮ್ಮುಖಮೆ ಅದೇ ಮೀರು ಫೆನಾ ಲೊಣುಫೆಂ ಬದ್ದಲ್ವ ಸರಹತ್ತವುಗೆ ವಾಹಕದ ಕಾರು ಮಿತಕಿತೀಗೆ ವಾಹಕ ಆಸ್ಫಾಣುವುಮಿ ಫಾಹಕ ಕೊಲ್ಲಂಚೆ ಹೇಕಮೆ ಮೀಗೇನ್ ದೇಹವಣಿ ಮುತಿಯಾ ಮುರಕ ಉಫೆದನಿ ಕಂಡುಗೆ ಸಾಫು ಲೊಣುಗಂಡು ಉಣ್ಣ ಸರಹತ್ತವುಗಾ ಕಮ ಮೀರು ಫೆನಾ ಲೊಣುಫೆಂ ಇಕುವ ಸರಹತ್ತವುಗಾ ಮಿತಕಿತಿ ನೂಫೆದೇಕಂ ಜಮಾನಿ ಕಂಡುಗೆ ದಿರಾಸಾತಕುಂ ಕಷವರು ಕುದ್ದೇ ಗೊತುಗ ಮುರಕ ಆಲಾವಣಿ ಹಮೈಕಣಿ ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಮಡು ಹೂಣು ಮಿಂಗುಣ್ಣ ಸರಹದ್ದವುಗ ಏಯಿ ವಾರೆ ನುವಹೇ ನುವತ ವರ ಮಧು ವಾರೆ ವೆಹೇ ಸರಹದ್ದಕೆ ಅದಿ ಮೀರು ಫೆಂಗುಣ್ಣ ಸರಹದ್ದವುಗ ಮುರಕೈ ನುಹೆದೆ ಗತರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಫೆಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಮೆರಿನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಸ್ಸಾಮ್ರಾ ಅರಬಿ ಕಂಡೋಳಿಯ ಉಮಾನ್ ಕಂಡೋಳಿಗ ನವಾರ್ಸತೆಗ ಅಡ್ಡಿ ಹಾತರಕುಂ ನವಾರ್ಸತೆಗ ಅಡ್ಡಿ ಹಯಕ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿರಾಸಾಹಿ ಕುರೆವಿ ದಿರಾಸಾಗಿ ನತೀಜಾತಕುಂ ಹಾಮ ವಿಗುದುಗ ಮಿಸರಹದ್ದುಗಾವ ಫೆಂಗಂಡು ಎಕುಲುವಿಗೆಂಬಣಿ ದೆಫಶಲೈಗೆ ಮಚ್ಚ ಮೀಗೆ ತೆರೆ ಮತಿ ಫಶಲಯಕಿ ಉಮಾನ್ ಕಂಡೋಳಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಫೆಂಗ್ ಅದಿತೀರಿ ಫಶಲಯಕಿ ಅರಬಿ ಕಂಡೋಳಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಫೆಂಗ್ ನಮವಿಸ್ ಮಿದೆ ಕಂಡೋಳಿಗೆ ಲೊಣುಗಂಡು ಎಕುವುಮುಗೆ ಅಸರು ಫೋರಾ ಹಿಸಾಬವ್ರೆ ದುರು ಸರಹದ್ದವುಗ ಫೆಂಗಂಡು ಎಕುಲವಿಗೆಂಬಣಿ ಎಗ್ಗೊಯಿಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಶಲೈಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಿ ದಿರಾಸಾಯಿ ಕಶವರುವಿ ಅಣೆಕಮಕಿ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗ ದೆ ಭಾವತುಗೆ ಫೆಂಗ್ ಎಕುವೆ ಎ ಫಶಲ ಅಣೆ ಫಶಲಾಗ ಮತೀಗ ಒಯ್ ನಮವಿಸ್ ಮಿದೆ ಫಶಲ ದೆ ಮೆದುಗ ಗ್ರೆವಿಟೇಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಕುಲವೇ ದಾಯಿಮಿ ಹುರಹೆ ಫಾಕ ಮಿ ಹುರಹುಗೆ ಸಬಬುನ್ ದೆ ಫಶಲಾಗೆ ಫೆಂಗ್ ಎವ್ವೆ ಎಗ್ಗೊಯ್ವುಂ ಮಣಾಕೊದ್ದೆ ಮೀಗೆ ನತೀಜಾಗಿ ಗೊತುಂಗು ಫೆದನಿ ಎಕಿ ಸಿಫತನ್ ಎಕುಲುವೆ ತಫಾತು ಮಿಕ್ಸರೆ ಖಂಡತವುಗೆ ಇಲ್ಮು ಕುರಿಯರಾದ್ಯ ಗೊತುಗೆ ತಾರೀಹಿ ಹೆಕಿತಕ ಬಲಾರು ಮೀಗೆ ಸಾದ ಕರುಣುಗೆ ಕುರಿಂ ಕೀರಿತಿ ಕುರುವಾಣ್ ಪಾವಾದೆವ್ವೀರು ಮಿ ದಾಯಿರಾಯಿಂ ಎವ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಮಿ ಮೌಲು ಮಾತಿಂ ಇನ್ಸಾನುಣ್ಣ ಲಿಪಿಫೈನುವೆ ಖಂಡುಗೆ ಇಲ್ಮು ಬೊಡ ಕುರಿಯರಾ ಫಾವಣಿ ಫಾಯ್ದ್ವಿದ್ಯೆ ಕರುಣೆಗೆ ತೆರೇಗ ವಕಿ ಖಾಸಕೊ ವಿಹಿವನ ಕರುಣುಗೆ ಫಹು ದಿಬ್ಯಾಗ ಲೊಣು ಕಂಡುತಾಕಿ ತಫಾತು ಸಿಫತಕಿಂ ಇಕುಲುವೆ ತಂತಂಕಂ ಇನ್ಸಾನುಣ್ಣಂಗಿಂಗುಣಿ ನವಾರಸತೇಕ ಸಾಳಿಹುಗೆ ಅಹರ್ಥಹುಗ ಏಯಿ ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಿಂಗ್ ಕಂಡುಗೆ ಎಕಿ ಸರಹತ್ತಕುಂ ಇತಂ ಹಾಸ್ ಸಾಂಪಲ್ಲೆನ್ನಗ ಫೆನುಗೆ ಹೂಣುಮಿನ ಲೊಣುಮಿನ ಏಗೆ ಬರ್ದಣ ಅದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹುರಿ ಮಿಂವರು ದಿರಾಸಾ ಕುರುಮ ಫಹು ಎ ಹೋದುಂತ ಕಫಹು ನೋಣಿ ಕಂಡುತವುಗೆ ಮೆದುಗಾವ ತಫಾತು ತಂ ಇನ್ಸಾನುಣ್ಣ ಕಣ್ಣೇಗೆ
1: ಫುರ್ಕಾನ್ ಸೂರತ್ಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಥಿಮ್ಮಣ ಆಯೆ ಏ ಆಯತು ಅಳವಣ್ಣ ಹೆಗಿಗೆಂ ಬಿದನಿ ಕುರಿಂವೆ ಸಂಗಿಗೆಂ ದಿಯ ಫದ್ಯಾಂಗ್ ಮೀರು ಫೆನಾ ಹಮ ಯಾಯಕುಗ ಲೊಣು ಫೆನ್ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾವಾಹಕ್ ಅದೇ ಕುರಾಣುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸಿಫ ಕುರವ್ವಾಹಮೇನಿ ಅದ್ಬು ಐ ಮೀರು ಅದಿ ಫುರಾತ್ ಐ ಫೋಣಿ ಏಮ ಫೋಣಿ ಮೀರು ಫೆನೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಮಿತನುಗ ಸಿಫ ಕುರವ್ವಾಫಮೇನಿ ಹಮ ಎಗುತ ಮಿಲ್ಹುನ್ ಉಜಾಜ್ ಮಿಲ್ಹಕಿ ಲೊಣು ಉಜಾಜಕಿ ಐ ಗದ ಎಮ ಲೊಣುಕಂ ಗದ ಫೆನೆ ಎಮ ಕಂಡುಗೆ ಫೆನುಗೆ ವಾಹಕ ಮಿತನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಾಹ್ ಮೆನನ್ ಎಮ ಮಿ ಸಿಫಕುರುಮುಗೆ ಸಾಬುಂ ಅಳೋಣ್ಮೆಣ ಎಂಗಿಗೆ ಮಿದನಿ ಕೋರಾ ಖಂಡ ಬದ್ದಲುವ ಹಿಸಾಬುಗ ಹುಣ್ಣ ಫೆಂಗ್ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂ ಎ ಬೇರುವೆಗೆನ್ ದಾಕಂ ಏಯ್ ಎಫೆನಕಿ ಫೋಣಿ ಫೆನ ಲೊಣು ಫೆಂಗ್ ಎಕುವೆಫಾವ ಎಚ್ಚಕ ವಾತಿ ಎಯ ಗದ ಲೊಣು ಫೆಂಗ್ಗೆ ಬುಣುಮುಗೆ ಮಾಣ ನೋಣ್ಣಾತಿ ಎಮ ಎಗ ಮಾಣಕಿ ಥೀಮ್ ಫೆನೆ ಅಳುವನ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಆಯತು ಸಾಫುಗೆಂ ಮಿ ದನಿ ಅದ ಫುರತಮ ಮೆನನಿ ಅಜ್ಬುಂ ಫುರಾತ್ ಏಯ್ ಕೋರ್ ಫೆಂಗ್ ಅದ ಏಯ್ ಮೀರು ಫೋಣಿ ಫೆನುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸಿಫ ಕುರವ್ವಾಹ ಮೆನನಿ ದೆಂ ಮೆನನಿ ಮಿಲ್ಹುನ್ ಉಜಾಜ್ ಏಯ್ ಖಂಡುಗೆ ಫೆಂಗ್ ಅದ ಗದ ಲೊಣು ಫೆಂಗ್ ದೆಂ ಮೆನ್ನನಿ ಎ ದೆಮೆದುಗಾವ ಹುರಸ್ ಅದೆ ಬರ್ಜಹುಗೆ ವಾಹಕ್ ಮಾಣ ಕುರೆಗೆಂ ವ ಫರ್ದಾಯ ಹಿಜುರೆ ಲೆವಿಗೆ ಮೆನ್ನನಿ ಎಮಿಮ ಮೇ ফেং এ সারাহাদ এই ওয়াকি সারাহাদ দেগে গতুগা মি বায়ান করবাফা মেনেন এমা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মি আয়াতুগে মেনেনি হিজরা মাহজুরা এগত বায়ান করবাফ আদে এ হিজরুগে মানাগা মি বায়ান বেগে মেনেনি এই মানা কুরমা দাতি করু আলনুন ফাসিহ কামা কো দেনগনে বিগে হিঙ্গা দানে খান্ডা কোর বদ্দলুয়া সারাহাদুগা দিরুলে দিরুন্তা এ সারাহাদুম বেরা নুদেবেনে হেং হানি দায়রায়গে তেরেগা হিফে হেট্টিফাওয়া হিফে হেট্টং এই আদে মাহজুরা এ মানে কি মানা করে ফাওয়া সারাহাদ্দেগে গতুগ এমেগে মানে কি এহেন দেরুন্তক বাণুং মানা সারাহাদ্দেকে এহেন কামুং এথানুগা মি মিদেন্নেই ফাদ্যাং এউলেনি এ সারাহাদ্দ খাস করে ফাওয়া দেরুন্তকং আলোন মেন্না এঙ্গিগেং এবাদে আদে এ তানুগে তেরেগ দেরুন্ত বেড় দিয়া নদী হিফাহাট্টা কোট্টেগে গতুগ মি হিজোরু মানা করে ফাহমেন্নানি হাম এগোত এ সারাহাদ্দুম বেরুং দিরুন্তং এতেরে বাণুম্মনা কুরাইফা মেননি মাহজুরা মি বন্ধু কুরাইফাওয়া তানেগ্গে গতুং মি লফজুম দেহা কদ্দে এম হিজুরং এতেরে বেড় দিউ মনা করে আদি মাহজুরা আইন বেরুং এতেরে বাণু মনা করা কামুগা মি ইলমারি বায়ান করবাফা মেনেন হাম এয়ায়কুগা আদি আলোন মেন ফেনিগেং মি দানি মি দেসুরতুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মি বায়ান করবাফাওয়া ওয়াহকতাহুগা মিয়ানানি তাফাতু এ দে হালাতেক ফুরকান সূরাতুগে ফানসাস তিমওয়ান আয়াতুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মি বায়ান করবাফা মিয়তি কোর ফেনা খান্ডো ফেনা এ বদ্দলুয়া বদ্দলু আদে মির ফেনা লুনু ফেং এ বদ্দলুয়া বদ্দলুমগে ওয়াহক মিতানুগা ইশারা করবাফা মিওয়ানি নমস আলোন মেং সূরাতুর রহমান বলাফি কামুগ বানম আলোন মেন ফেনিগে মিদানি দে কান্ড আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মে বায়ান করব ওয়াহ মেনানি মারাজাল বাহরাইন ইলতাকিয়ান বাইনহুমা বারজখুল লা ইয়াবগিয়ান ফরদাইন হুরাহেবে একতানে কচকা মাসুনিবে এ দা দিউং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কন্ট্রোল করব ওয়াহক ইয়াখরুজু মিনহুমা লুলুউ ওয়াল মারজান দে কান্ড মুতিয়া মারজান নেরুবাবাহক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বায়ান করব্বা হেমে ইলমারি বায়ান করব্বাহ মেননি মি দে আয়েতুং এঙ্গিগেন এবদে মি লোনু দে কাণ্ডুকাং এগে হেক্কি আয়েতুগ মেননি দে কাণ্ড হেমে এ লাফজু বেনুং কোফা ওতুং এই দেহ কদ্দে এই লোনু দে কাণ্ডুকাং এ ফুরতম আয়েতুগ মেননি মারাজাল বাহরাইনি কাণ্ড আসমতে হেমে এ লাফজুং এবেঙ্গে এই দে কাণ্ডুকাং ফাহু আয়েতুগ মেননি বাইনহুমা বারজাখুল লা ইয়াবগিয়ান ফাহাতুং এবাদ বাইনহুমা বারজাখুল লা ইয়াবগিয়ান এক ফাহুগ মেনেন ইয়াখরুজু মিনহুমা আল-লুলু ওয়াল মারজান আদে মুতিয়া মারজান এ দেখাণ্ডুং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নেরুবা ওয়াহক আদে হেমা সায়েন্টিফিক হোদুন তাকুং এগে গতুগা মারজান আদি মুতিয়া মিথাকে নেরুবানি লোনু ফেনুং কাং আলোন মেননা এঙ্গিগে এবাদে এম বি মি লোনু দে কাণ্ডুগে বাহক কং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মি তানুগা বায়াং কোরব্বা ফামিওয়ানি এ দেহালতুগা বেস দে কাণ্ডু বদ্দলুয়া হিন্দুগা কং হিঙ্গা গোয়ে তাফাত ওয়েগে মি দানি আদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বায়াং কোরব্বা ফামিওতি ওয়া জাআলা বাইনহুমা বারজাখাম ওয়া হিজরাম মাহজুরা আদে হিজরাম মাহজুরা বেরং এতেরে ওয়ানুমা এতেরে বেড় দিউ মনা করবিগিম ওয়া ফদ হুরহে ফরদায় লেবিগিম ওয়াকাম বিতানুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বায়ান করবাহ মেতি এনএমএস আর রহমান সূরাতুগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বায়ান করবাহ মেনি মারাজাল বাহরাইন ইলতাকিয়ান বাইনহুমা বারজাখুল লা ইয়াবগিয়ান বারজাখে এদেমেদুগা হুরহে লেবিগিম ওয়াকাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বায়ান করবাহ ফামিওয়ান মিয়াদুগে সায়েন্টিফিক হোদন্তকুম মিকাঙ্কা আলোন মেন্না ওয়ারা সাফগেং এবা দে আদে একাঙ্কা সাফুগে মিয়াদু দাহিদু আলোন মেন্না এঙ্গিগে মিদানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাগে এ কুলদুমন্তকাং মিগে সাদস্তেক আহার কুরি মা নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাওয়ালেভি মি আল্লাহুগে খালাম ফুলুগা মি ওয়াহাকাতা আলোন মেন্না বায়াম বেফামিয়তি
0: লনুগদ কড়তৌগে মেদুকাওয়া ফরদা নুয়তা বারজাহকি কোবাকং ইনসানুনং এঙ্গিফাওয়ানি কণ্ডুগে দিরাসাত কুরা মরকস্ত কায়মুকো গুদুতকিগে সিফায়গা দতরু কুরমুন্দা মি বারজাহত দেনেগতমা গিন দুয়স্তকি বন্দেং মাসেকে কুরমা ফহু মি বারজাহগে জিওগ্রাফি সরহদ আহারুগে মোসুন্দকং আন্ন বদলত কায়কু বদলব মুন্দে ਉਰਵਾਨਾ ਸਾਇੰਸ
2: ਅਲਗਨ ਮੈਂ ਮੀ ਹਫਤਾ ਮੀਗੇਨਸਤਿਨੀ ਗੁਰਵਾਨਾ ਸਾਇੰਸ ਮਿਸਿਸ ਲਾਗੇ ਐਮ ਐਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸਿਸ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੰ ਅੜੂ ਸੋਮੰ ਇਹੁੰਤਰਿਮ ਬਿਹਟੋ ਏਸ਼ਾ ਗੋਰੇ ਕਮਟਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਵਾਨਾ ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਮੀ ਹਫਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਫਸਾ ਅਬਦ ਰਸ਼ੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰਡੀ ਗੁਤੋਂ ਇਹ ਤਿਰਵੇ ਦੇਬੀ ਅਸ਼ੇਖ ਨਸਰੁੱਲੋ ਅਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਫਦਾ ਇਕੁਲਵਾਲੀ ਅਲਗੁਨ ਸਾਮੀ ਅਹਮਦ ਵਹੀਦ ਮਿਹਸਾਬੁਂ ਗੁਰਵਾਨਾ ਸਾਇੰਸ ਮੀਨਮਗ ਅਲਗੁਨ ਮਿਗਨਸਿਨ ਸਿਸ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਿਮਾਲਾ ਫਾਕਿ ਵੇਲਾਨ ਇਮ ਮਿਹਾ ਇਹੁਣ ਤੇਰਿਨ ਬਾਜੁਰ ਦੋਸਤਕੰ ਇਦਿਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।

0: Army, I'm a fuzzy guy.
1: Hey, ये तो कुरानी.
0: मैं खोटरी तेरे साफ कर लेनी है ना. बड़ी थाना में हो रही है चीज़ तुम खा लो फिर नू.
1: ऐनु लात, एक ती कमिस. वैसे कम दानी, तीन हो रही है. असल नमस्कार.